हिनी नो आदि दाने दे तो न तुम्हें फिर तीप एम्बल इब्दी आने अमसे हिनिन तो हालागा तशड़गा तीप मूसा हुआ मरी अमित हुआ तुशीलाती हुआ मार्रा हुआ एलीमी हुआ ए आमे हदी दाने मलिया उकवासनाय उमलक इसराइली देश सूरी सकीब बेन अगराय बरेओ हरी सकिया इबलूके आमूद हन सूरीसी हंतायाय बरेओ हरी इंगत मलिया उमलक मसरेब ओडेशुआ इसराइली देशुआ एप्तिक इंगत वहावात कसो इबलूके दर गाल टिबिन इके ऊदर ऊराव अरे नूर इके अफलाय बारा वहावात कसो तक तक दिवलाप की के मलिया मूसा वायो ओभारे की याबिक अंकवाना बे उहावाद उयन तलावी अकरा बाराम या किसी आयत ओभर हरा यागिर अरे बलामा हाश इक्वास आयम इक्तान अरे इसराइली उभरी थोईते बलामा हाशी हिरेरियान आयम अरे बरेओ उमायुगदुआ उतरहगवादी बुआ किर्राब इकेन मलिया इमसरी बारे इनाकिबन अरे कस्से फिरओनी यहतय हुआ इतंबिल हुआ यहतय ओमाना हुआ उभरी थोय ओकी बरेओ हरी डाबियान लाकिन ऊमा महाब्बा काय उनकाना तुन एति आमूदी हुआ इबलूकी हुआ मसरे ओडेश इशबिब उडेश हुना विन्नेत नाद इसोगिम इतंबिले कफरा यालुक इदे अफलाय बरा वंतायते इगोइन इमसरे तक तके धाय एन इसराइले होय गीगने अंकाना बरेओ जिल्लाय मसर फिनाईने इदीन मलिया अंकाना मूसा इधाय वायोक मसे उभरी की अबेका शाउते इमसरी हुआ इतंबिले हुआ यतायोमनाय हुआ आयम अगिर्तित थी इमशवावीन इदि तुइन तलावा तिदि हो मूसा वायो ओभरि खी याविक आयमन उमीनो इशिया बेत यगर्न इमसरे डब जर्रबियान लाकिन उंक्वन बरे एम इसीसेव मलिया आयम यगर्नी इतंबिलुआ यतायोमनावा कसो फरओनी ओडेश इसराइल इंकबुआ ईहेन बरे गालहन होय धनाप कीक लाकिन इसराइल उभरी थोयते बलामा हाशी हिरेरियान आयम अरे बरेओ उमायुग्वादी बुआ उतरहग्वादी बुआ किर्राब इकेन बेन ओंबे अंकाना इसराइल इमसरे आये इशिधन इसराइल अरे इमसरिये किनाजा ओभरे गिन्नाल रियान इसराइल उमतूने अकरिर अंकाना इमसरिये की इदिये रियानो ऊधई अंकाना इरुक्वीन बरो हुआ उकिशियायो मूसा हुआ आमनियान उफासिल तमनाईये मलिया मूसा हुआ इसराइली हुआ तोन तो कफ अंकाना इधाई कफियान अंकाना काफे अंदे बरु विन्ने यहबना रईमिया वाताय हुआ ओमनाय हुआ उभरी तिक्सिया अंकाना अकरिर हुआ शीलात हुआ इकते है बरु इशिडाने बरु उक्वासानाय इकते अरे बरो इहिमिद अंदे बाबी उक्वासाना अरे बरो तगेक्स अंदे अंकाना फिनायानाव अंकाना ओस्मो इकाते फरूनी इतंबिल हुआ उडेशु हुआ उभरी इगित फरूनी इदाप्ता हैस उभरी डिबिसिया आयम इडोमा बरे इहेन बरा अवीत इयमि थोयते तुकुयान या वंकनाय वायु उमेक्वा अक्रिरे हदाबे या वंकनाय वायु उमेक्वा वाशु हुगिया तदा येत्योक
Umatuni, barok, imakar, tigriba. Balol tinit, tasiaitok, lawista. Batu, bare, aggait, tiliu. Yamshuketok, tutiuti, ayam, komamian. Ayam, itrigis, tetati, ingadna. Ayam, iduma, obari, toite, yakirna. Pashu, asakamia, ani, inkab, ande, bare, ibik ande. Ani, tigani matehna, idit ande. Are, harriwena, kasto, iayande. Ani, baddu, ilibande. Are, ani, pai, bare, kutsi indi, indi. Lakin, baruk, yamshuke sok, timfia. Ubar, bare, ukta, ayam, iguida, bare, orsasit, ihe. Ya wankwanay, sanamaye, barok, titi, awefi. Barok, titi, abu. Tadayeti, utagegab. Umatuni, patrakuyab. Ajayib, ikwasib. Baruk, ayok, umayugwadib, tifidida. Tubut, are, bare, tikta. Tirhamatek, tigudanate, odhay, itishidhane, surkinami, tindiya. Akriresok, bare, mityai, tindiya. Ugavok, umugaddas, beti, mityai, tindiya. Idhaya, masiutit, idi iadna. Ifalastini, mirkwai, ibikindi. Adome, vihada, Iraq iadna. Moavi, surkina, katati iadna. Kanane, budhai, darwiwi iadna. Mirkwaiwa, idatwa. Hoidibi iadn, ayok akranai, ya wankwanai, udhayuk, hasaminie bokik, bara, wawi, itena, shuk, anub, ikatin. Odhay, ibarok, tishidhane, hasamene bokik, bara, awi, iteb, ikatin. Baruk, bare, hai etit, andiya. Tikwasateok, ribai. Ya unkwanay, omin, ugawok, tidiyeb, umugaddas, beb, ayak, edina. Wankwana, dimab, hadab, ikte indi, dimabwa, kassohobwa, ikte indi idi. Faronib, yhatayuwa, itambilwa, yhataya omanawwa, obhar, tikuyanob, unkwana, obhariyam, bareoki, ishawawi. Lakin Israeli Ubharib Balama Hashib Sakyan Malia Mariam Tunabi Haronit Tukwa Hashio Jillukat Yakista Tamathan Kasta Jillukat Ihenit Iramna Are Ilagna Mariam Bateodhai Kafta Wankwana Winnet Ansirama Buit Bariodhai Kafana Baru Wataiwa Omanayuhua Ubhari Bigit Tidi Malia Musa Israeli Obhar Adaroi Milhatit Shureb Umingai Oki Hai Gigia Bara Umingai Mai Bi Yam Anu Ibabian Bara Marab Iktimnob Yama Hami Bait Ikwiti Adgirab Kike Onu Sabbi Ben Umin Marra itosam hamiba miadi. Aflay uday Musay ki ashkimiana. Nan winay idin. Malia Musa onkwana idhay wawiya. Onkwana are baro hindi kitane risiya. Baru hindi yame igit ayam are nafirikin. Onkwana bentoy bareo dhai ganunwa hagwa idit bentoy bare jarrabia. Baru onkwana kwasanayokna wis daib temsi unek bario suri shibona tidanek barite tiwasi sinakirtit hai shagamtenek ani imasiri ki hai adiet tilhanai gathan hokna kaade. Ani barekna melini onkwana akatede. Malia bara eli moki ean. Bentoy tamna
malu tawabu asarama tamun akai hindi wa ifin bara are bento yami dara kokian enenu dayunei daina nisari okna ko betu nati embali tumi feriti ibni di tuna tunisari we tukna daina shalla hoitimerna tiharunena ka shalla hoitimerna ottona ombatu embali boini dietu are soalua rattiua nati varita kehek wasabi edne naib ombario embali bamsiodainohon.